0: चमोली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज समुदायक आवाज
1: ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन
2: lensnepal.com इन फोकस यू एंड एवरीथिंग

World Inco Festivity Offer. अब Pound House 1 वर्ष को 200 Mbps Internet TV साथ में Dual Band Router, Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set-Top Box मात्र ₹1200 प्रति महीना में सर्थ हरू लागू होने चाहिए। छिटो बने गई World Inco।

जी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेन्ट एआई पिक्चर एन्ड साउन्ड सँग अप टु 30% क्याशब्याक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेन्ज भ्यालु प्लस 4 इयर्स फुल वारेन्टी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियन्स एलजी लाइफ्स गुड